0: शिक्षा।
1: हजुर को रेडियो 102.1 मेगाहर्ज।
2: हैन हिजो घरमा जाँदा त्यस्तै चमक, आज अफिसमा आयो।

0: पीआरबीटी 01600033205 पीआरबीटी 6054017 यूटीएल 7732506
1: शब्द संगीत र स्वर माधव केसी अरेन्जर यमन खनाल उत्पादक तथा वितरक सुपा देउराली म्युजिक प्राली काठमाडौँ प्रबन्धक यमन खनाल सम्पर्क 9849

0: किसान को आली र फाली देखि उपभोक्ता को थाली सम्म
1: यसरी फलिरहेछ तर देश में सम छैन नगरपालिकाले के गर्ने चीज सुने के गर्ने
2: गाड़ी भाड़ा पता हो अब जम्मा फायदा भनेको दुई रुपया और पांच रुपया हद दाम बस त्यति बस्ने
1: त्यसको भाव छ त्यो भाव चाहिँ संबंधित मान्छेले पाउनु पर्यो यो बिचौलियाले अलिकति गरेछले
3: सुन फलाउने माटो र कृषि कर्म को बाटो का कुरा कृषि र किसान का पाटो का कुरा
4: आलू धेरै हुन्छ मकै धेरै हुन्छ कोदो धेरै हुन्छ
5: गत वर्ष को रेकर्ड तरकारी खाने आलू तीन करोड़ को बिक्री भएको थियो एउटा कालो गुडारी आलू को बिउ भनिन्छ छ करोड़ को आलू बिक्री भएको थियो
0: किसान का सीधा प्रश्न विज्ञ र सरकार को जवाब
1: टमाटर साग सब्जी लिया बजार में बेचने जीन के चावल से लिया वजन करने मेरा काम तो है किसान मुखी बजट देश में किसान ओवर न लागू लेकिन देश में लाभ दें
6: नियमित बजट अंतर्गत 17 अरब सात आठ अरब को अर्क विशेष पैकेज आंत्री हुआ नाओ किसान को पक्ष मंत्री तब अगड़ी बढ़ु
0: समृद्ध नेपाल सार्थक बनाने कृषि को साझा सवाल
3: कार्यक्रम कृषि सवाल
7: नमस्कार कृषि को विकास प्रबंधन और व्यवसायीकरण के पथ में कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवाल में यहाँ हार्दिक स्वागत है मूँ असीम सापकोटा कार्यक्रम कृषि सवाल नेपाल एफएम नेटवर्क ने उत्पादन करने साथ ही कार्यक्रम उत्पादन में एग्रो टाइम्स मीडिया नेटवर्क ने सहजीकरण करने कार्यक्रम कृषि सवाल देशभर का विभिन्न रेडियो स्टेशन मार्फत प्रसारण होने काठमाडौं उपत्यका में एफएम 91.8 मेगाहर्ज संगे काठमाडौं उपत्यका बाहर पपुलर एफएम 99.5 मेगाहर्ज सुनसरी सामुदायिक रेडियो नया अभियान एफएम 99 मेगाहर्ज संखुवा सभा रेडियो लालीगुराज 105.2 मेगाहर्ज धनकुटा रेडियो खबरपालिका 88.7 मेगाहर्ज धनकुटा सामुदायिक रेडियो हलेसी एफएम 102.4 मेगाहर्ज खोटाङ रेडियो एभरेज 96.8 मेगाहर्ज सोलुखुम्बुबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा रेडियो बैतेश्वर 94.5 मेगाहर्ज ऐना पोखरी दोलखा रेडियो हिमाली 101.7 मेगाहर्ज दोलखा रेडियो रामेछाप 95.8 मेगाहर्ज रामेछाप हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज रामेछाप रेडियो मेलम 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक रेडियो जुगल 98.1 मेगाहर्ज सिलढुङ्गा सिन्धुपाल्चोक रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज कोसीपारी काभ्रे रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज धुन्चे रसुवा नीलकण्ठ एफएम 98.5 मेगाहर्ज धादिङ बेसी धादिङ रेडियो राजमार्ग 92.1 मेगाहर्ज धादिङ रेडियो चिम्टेश्वर 90.9 मेगाहर्ज बिजोर नुवाकोट रेडियो बागमती 107.4 मेगाहर्ज ककनी नुवाकोट रेडियो कास्की 90.6 मेगाहर्ज पोखरा कास्कीबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ साथै कार्यक्रम कृषि सवाल गलिङ एफएम 92.2 मेगाहर्ज गलिङ सेक्जा रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पा रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज कावसते नवलपुर रेडियो कावसते 102.6 मेगाहर्ज कावसते नवलपुर दाउन्ने एफएम 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँची 105.8 मेगाहर्ज अर्घाँची भेरी एफएम 105.4 मेगाहर्ज नेपालगंज बाँके रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी रेडियो रामारसन 92 मेगाहर्ज अछाम रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला रेडियो प्रभु 102.6 मेगाहर्ज कञ्चनपुर रेडियो बुङ्गल 98.3 मेगाहर्ज बझाङ सौगात एफएम 103.6 मेगाहर्ज बैतडी सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्ज मेलौली बैतडी र बैतडीमै रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्जबाट पनि कार्यक्रम कृषि सवाल सुन्दै हुनुहुन्छ।

0: सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो
1: रात को 9 बजे।